कम सा जगा मिदिया मारुदाता है कमाल तो आप तुमी डरु आप गुंदवार बगारंजाव जान आलियान तो सिदान लबुआ साल कारी बुआ तुम्हारे बापु पुआ तंगियन गिला चपुआ